0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कभी कभी जिंदगी एकदम थम जाती है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना लोग, ना बातें, ना खुद का चेहरा। आज की कहानी है आयुष की, एक 25 साल का लड़का जो हमेशा सबको हंसाता रहता था पर खुद अंदर ही अंदर चुपचाप टूट रहा था। सब नोटिस करते थे कि आयुष बदल गया है, लेकिन किसी ने पूरा पूछा नहीं। उसने भी किसी को कुछ बताया नहीं, बस थक गया हो कहकर मुस्कुराता रहता। लेकिन एक दिन जब उसने अपने डायरी में लिखा, शायद मुझे किसी से बात करनी चाहिए, वहीं से कहानी बदली। उसने पहली बार अपने कॉलेज के काउंसलर से बात की, पहली बार अपने दोस्तों को अपना दर्द के बारे में बताया, और सबने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा। न जज किया, न ज्ञान दिया, बस साथ दिया। थोड़ा थोड़ा करके आयुष ने लिखना शुरू किया, फिर वॉक पे जाना, और एक साल बाद आज आयुष एक एनजीओ के साथ काम करता है, उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। डिप्रेशन एक अंधेरा है, भरा अंधेरे में एक छोटी रोशनी होती है, बस जरूरत होती है उस रोशनी तक हाथ बढ़ाने की। अगर आप या आपका कोई अपना ऐसे फेस से गुजर रहा है तो याद रखिएगा, बात करना जरूरी नहीं होता, पहला कदम उठाना जरूरी होता है, के बाद बात करना भी जरूरी होता है। क्या पता आपका भी दोस्त किसी ऐसी चीज से गुजर रहा हो तो उससे बात करके देखिएगा, पूछिएगा कि क्या हुआ। सबसे पहले बताएगा, कुछ नहीं यार, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उस बढ़िया के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, समझिएगा और सुनते रहिएगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब ना तो अपनी बाइक या कार की रेगुलर सर्विस तो करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे। थोड़ी सी आवाज आए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अपनी बॉडी की सर्विसिंग आखिर कब करोगे आप, और आखिरी बार कब की थी कुछ याद है? एज अगर आपकी 30 साल की एज है तो उसके बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिना किसी सिम्टम्स के भी बढ़ सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर, कैलोरीज और ब्लड शुगर। और दिक्कत ये है कि कई बार इनका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर रेगुलर हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। आजकल हम फिटनेस एप्स में स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ नंबर्स, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पता ही नहीं होता है हमें। और दोस्तों, एक खास बात की हेल्थ चेकअप करवाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेहत को लेकर आप सीरियस है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो इस साल एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएगा, क्योंकि सेहत की असली जीत तो समय पर जांच करने में है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और याद रखिए, आज का एक हेल्थ चेकअप कल की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। स्टे ट्यून्ड।

0: मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम करने के लिए कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
1: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना, वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन लाइक वी डिस्कस्ड कि हम करते नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करेंगे, और 10 मिनट माइंडफुल रहना है, एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
0: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचे मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।

0: ஆதர்ஷ் கிளினிக், ஹர்சல் டீ பாயிண்ட், HP பெட்ரோல் பம்ப், சேசாரி, ஜல்காவ் ரோட், சத்ரபதி சம்பாஜிநகர், அந்த ருக்ன விபாக், திஷா ஹாஸ்பிட்டல், சமோபதேஷன் கவுன்சிலிங் சென்டர், சந்த துக்காராம் நாட்டியகிரகாச்சா ஜவர், சத்ரபதி சம்பாஜிநகர். கான்டாக்ட் ஆன் 8888992688.
1: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा. बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM University N6 SIDCO. विजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
4: Master tomorrow's tech today, not someday. Make today's one right decision, tomorrow's bright future. Join Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at MGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 9371174254.

0: फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। आरजी अदनान आपके साथ
1: आज से फरमाइश आली है राहुल जाधव कडून या गाण्यासाठी।

स राहुल ची फरमाइश अपन पूर्ण करूयात। राहुल जी के लिए ये गाना सौरंगाबादकर। तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर व्हाट्सअप करा 9359320081 किंवा इंस्टावर मेसेज करा RJ अदनानला।

जैसे कुछ हमारे दोस्त वक्त आने पर रंग बदलते हैं, उस तरीके से एक मिठाई ने भी आजकल रंग बदल दिया है, जो कि अपने शहर की बहुत फेमस मिठाई है। और FDA जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ना, जिस वजह से हर एक होटल वाला या जो जहां पर खाने की चीजें बनती वो सब एकदम स्ट्रिक्ट हो चुके हैं एंड मिलावट वगैरह थोड़ी कम हो रही है। जिस तरीके से इमरती एक बहुत ब्यूटीफुल और आया है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, तो इमरती की मिठाई का कलर ही आजकल गायब हो गया है और ओरिजिनल कलर में हमें इमरती दिखाई दे रही है। FDA ने कहा है कि किसी भी तरीके का जो कलर है आप खाने में ऐड करते हैं वो मिलावट नहीं जमने वाली है, बट कलर के बिना इमरती ना तो हल्की पीले रंग की नजर आ रही है। यानी कि अब तक जो हम इमरती खाते थे वो मिलावटी कलर वाली थी, अब जो आ रही है मार्केट में ओरिजिनल है। बस इमरती नहीं, ऐसे जितने भी खाने हैं ना जिसके अंदर कलर ऐड किया जाता था, तो उन सभी के ऊपर बैन लग चुका है, क्योंकि किसी भी खाने में कलर डालना एक तरीके का क्राइम है, ऐसा भी कहा गया है। बहुत सारे डिशेज थे जिसके अंदर कलर का यूज होता था, जैसे भजिया है, बारिश के मौसम में चाहिए ना, उसमें भी कलर मिलावट होता ही था। जो आप फ्राइड चिकन हो, वेज हो, मोमो, तो जो कुछ खाते थे उसमें भी मिलावटी कलर होता ही था। उन सभी जगहों से कलर अब हटा दिया गया है। आई होप किस तरीके से जो अभी ये काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में भी ना, तो ऐसे काम ये शुरू रहे ताकि जो मिलावट हो रही थी वो हो ना सके और हम हेल्दी खाना खा सके। सो स्टे ट्यून्ड।

0: दुविधा क्या ही कहे। देखो क्या है ना, आजकल बरसात बहुत अच्छी हो रही है शहर में, जहाँ देखो वहाँ पर बस पानी पानी आपको नजर आएगा। लेकिन इस बरसात के मौसम में ना तो आप चांद की सफर भी कर सकते हैं। जी हाँ, चांद की सफर करने के लिए आपको चांद पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने छत्रपति संभाजीनगर के रास्ते ही काफी है, जो कि आपको एकदम फील देने वाले चांद का, मंगल ग्रह का। क्योंकि शहर में रास्तों पर इतने गड्ढे हैं जितने गड्ढे चांद पर भी नहीं होंगे, उतने गड्ढे तो अपने शहर के रास्तों पर नजर आते हैं। तो क्यों जाए हम स्पेस में, जब मजा लेना है स्पेस का अपने धरती पर ही। तो अगर आप अपने जालना रोड से गाड़ी चला रहे होगे तो आपको मेन सिटी में सबसे बड़ा गड्ढा मिलने वाला है, क्रांति चौक ब्रिज के नीचे एक बड़ा गड्ढा है जो कि अभी कुछ दिन पहले तैयार हुआ था। तो वहाँ पर भी आप इसी चांद के सफर कर सकते हो। इसके बाद छोटे मोटे गड्ढे तो अपने शहर में बहुत सारे जगहों पर है, फिर चाहे दूध डेयरी सिग्नल हो या मोंडाना का ब्रिज हो, सिडको के पास का एरिया हो, बाबा पेट्रोल पंप वाला एरिया हो, गुलमंडी, पैठन गेट, सिडको, हड़को, बीड़ बायपास रोड, जहाँ देखो वहाँ पर बस गड्ढे गड्ढे और गड्ढे आपको नजर आएंगे। तो ये गड्ढे नहीं है, ये हमें फील दिलाते हैं कि हम रास्तों पर नहीं है, चांद पर स्पेस में गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि और कहे तो यार शहर डेवलप नहीं कर रहा है अपना, कितना डेवलपमेंट हो रहा है और क्या चाहिए शहरवासियों को। थैंक यू सो मच महानगर पालिका फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। बस हेलमेट लगाना ना भूले और इसी तरीके से हमारे शहर को और स्मार्ट बनाते रहो। बस गड्ढे वाला शहर, खड्डा रास्ता के रास्ता खड्डा का गलत नहीं है, बट क्या ही करे, चलता है, चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। जाऊन दिया, स्टे ट्यून। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
1: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM युनिव्हर्सिटी एन 6 सिडको. व्हिजिट mgmu.ac.in. कॉल 9503082913.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: मास्टर टुमारोज टेक टुडे नॉट संडे. मेक टुडेज वन राइट डिसीजन, टुमारोज ब्राइट फ्यूचर. जॉइन Dr. G. Y. Patrikar College of Computer Science and IT at NGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G. Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 937-117-4254.

रुकिए रुकिए रुकिए, सफरनामा पर मैं आपको लेकर ही जाऊंगा, लेकिन कुछ ही देर में आरजी अदनान आपके साथ आ चुका है और वक्त हो चुका है 10:40 का। एकदम मॉर्निंग आज की रूहानी है, क्योंकि क्या है ना, बरसात का आगाज हो चुका है शहर में। सुबह से बहुत जोर से बरसात शुरू है। और यार एक बात मैंने आज ऑफिस आते हुए नोट की, जैसे ना बरसात के मौसम में बचपन में अगर जोर से बारिश हो रही थी तो हम कहते थे कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाना यार। मम्मी कहती थी ठीक है आज मत जा, आज छुट्टी ले ले। आज भी मेरा मन ऐसा किया कि यार आज मतलब ऑफिस नहीं जाते, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू है। फिर याद आया कि नहीं, अब हम बच्चे तो नहीं रहे, मतलब बारिश कितनी भी हो, हालात कुछ भी हो, ऑफिस तो जाना ही है, काम तो करना ही पड़ता है भाई। मतलब अडल्टहुड का यही एक बैड लक होता है कि यार बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो जाए, अपने काम पर तो जाना ही पड़ता है। आज भी आप देखो ना, रास्ते से गुजरते होंगे तो हर कोई ना तो इतने सुबह बारिश में भी छाता लेकर, रेनकोट लेकर अपने अपने काम पर निकल चुका है, और बच्चे घर पर आराम से, कोई सोया हुआ है, किसी की मम्मी कह रही है कि आज बाहर मत जा, आज घर पर ही रहे, घर में बैठ के टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं। ये बचपन हमने भी ऐसा एंजॉय किया है। खैर ते शेवटी म्हणतात ना, गेले ते दिवस राहिले त्या फक्त आठवणी। अब अडल्टहुड भाई, इसका मजा लीजिए। और जो गाना भी अधूरा रह गया था लकी अली की आवाज में, सफरनामा, वही अभी हम सुनते हैं। और ये अपनी जिंदगी का भी सफरनामा ही तो है, एकदम बचपन, फिर जवानी, फिर 30-40 साल की उम्र, फिर बुढ़ापा, फिर मरना, ये भी तो एक सफरनामा है। इसी सफरनामे के नाम और इस मौसम के नाम लकी अली जी का गाना भी आपके कानों पर प्ले हो रहा है। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MJ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय अपने आप में बहुत खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी कुछ पल सुकून से बिताने का मैसेज दे रही हो। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा मुश्किल भी रहा हो तो कोई बात नहीं, ये खूबसूरत शाम नई एनर्जी नई उम्मीद लेकर आई है। अपने परिवार के साथ मुस्कुराइए, दोस्तों से बातें कीजिए या बस अपने पसंदीदा गाने सुनकर इस पल का आनंद लीजिए। हमारा साथ भी आज के सुहानी शाम को और भी खास बनाने के लिए है। अगले दो घंटे तक हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन गाने, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मुस्कान। तो आराम से बैठ जाइए, चाय या कॉफी का एक प्याला उठाइए और इस प्यारे से शाम का आनंद हमारे साथ लीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, मिट्टी की खुशबू और ढेर सारी ताजगी लेकर आता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बाहर निकलना हो तो कोशिश कीजिए अपने साथ छाता या रेनकोट जरूर रखें। कई बार मौसम बिना बताए बदल जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, ऐसे में छाता या रेनकोट आपको भीगने से बचा सकता है। और अगर आपका काम ऐसा है कि बारिश में भीगने की संभावना ज़्यादा रहती है तो अपने बैग में एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े भी रख लीजिए। इससे अगर आप भीग भी जाए तो सूखे कपड़े पहनकर आराम महसूस करेंगे और सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से भी बच सकते हैं। याद रखिए, बारिश का मज़ा ज़रूर लीजिए लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। थोड़ी सी तैयारी आपके पूरे दिन को आसान और आरामदायक बना सकती है। चलिए अब इस प्यारे से मौसम का आनंद लेते हैं और सुनते हैं शानदार गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश की हल्की हल्की फुहारें, ठंडी हवाएं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ऐसे मौसम में अगर हाथ में गर्मा गर्म चाय का एक प्याला हो तो बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, मानसून का मजा सिर्फ बारिश देखने में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में भी है जो इस मौसम को खास बना देते हैं। एक कप चाय, खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को देखना, परिवार या दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें करना, यही तो है वो पल जो चेहरे पर मुस्कान ले आता है। अगर आप इस वक्त घर पर है तो क्यों ना अपने लिए एक प्याली चाय बना ले, और अगर आप काम पर है तो ज़रा ब्रेक लेकर चाय की चुस्की के साथ खुद को तरोताज़ा कर लीजिए। कभी कभी दिन भर की थकान दूर करने के लिए बस एक कप चाय और कुछ सुकून के पल ही काफ़ी होते हैं। तो इस सुहानी बारिश के मौसम का पूरा आनंद लीजिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और चाय की हर चुस्की में इस मौसम की मिठास महसूस कीजिए। अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। बने रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनने पर अच्छे लगते हैं और फिर धीरे धीरे दिल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत एहसास लिए हुए है ये अगला गाना। इसकी धुन, इसकी बोल और इसका रोमांटिक अंदाज सुनने वाले के चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आता है। कभी कभी प्यार किसी बड़े इजहार का नाम नहीं होता, किसी की एक मुस्कान, एक नज़र या साथ बिताया हुआ एक छोटा सा पल भी दिल को खुश कर देता है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को खास बनाती है और यादगार भी बनाती है। अगर आप भी इस वक्त अपने किसी खास को याद कर रहे हैं या बस इस सुहाने पल का आनंद ले रहे हैं तो ये गाना आपके लिए बिल्कुल सही है। अपनी सारी भागदौड़ को कुछ देर के लिए भूल जाइए, आराम से बैठिए और इस खूबसूरत धुन का मजा लीजिए। तो पेश है एक बेहद प्यारा और रोमांटिक गाना, सुनिए, महसूस कीजिए और इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए हमारे साथ, सिर्फ यहाँ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात
1: पाणी प्राणांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
0: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, आयओटी, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।
4: It's P on the track.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और खुशनुमा एहसास लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में सर्दी खांसी की परेशानी भी जल्दी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम ठंडा लगे तो हल्के गर्म कपड़े ज़रूर पहने, बारिश में भीग जाए तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन ले, इससे शरीर को ठंड नहीं लगेगी और बीमार पड़ने का खतरा भी कम होगा। अगर गले में खराश महसूस हो या हल्की सर्दी लगे तो घर का बना गर्मा गर्म काढ़ा या कोई गर्म ड्रिंक ज़रूर ले। साथ ही आराम करना और शरीर को गर्म रखना भी उतना ही ज़रूरी है। छोटी छोटी सावधानियां आपको मौसम का पूरा आनंद लेने में मदद करेगी। याद रखिए, सेहत अच्छी रहेगी तो हर मौसम और भी खूबसूरत लगेगा, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मौसम का मज़ा लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अभी इसी खूबसूरत संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने। बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि अभी मनोरंजन का सिलसिला जारी है इन द शो दिल से ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है उतना ही अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। इस मौसम में कई बार पानी दूषित हो सकता है, इसलिए एक छोटी सी सावधानी आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। अगर हो सके तो पीने का पानी उबाल कर या अच्छी तरह फिल्टर करके पिए। उबला हुआ पानी शरीर के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और इससे कई तरह के संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ पानी की बोतल भी रखें। इससे आपको बार बार बाहर का पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी आदतें ही अच्छी सेहत की सबसे बड़ी पहचान होती है। बारिश का आनंद ज़रूर लीजिए, गर्मा गर्म चाय का स्वाद भी लीजिए, लेकिन अपनी सेहत से कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस खूबसूरत मौसम का मज़ा भी खुलकर ले पाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस शो में जिसका नाम है दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम आते ही एक तरफ एक अलग सी ताजगी छा जाती है, ठंडी हवाएं, रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ये सब मिलकर मौसम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आज आपके शहर में बारिश हो रही है तो इस मौसम का आनंद ज़रूर लीजिए। कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को निहारिए, कभी अपने पसंदीदा गाने सुनिए तो कभी अपनों के साथ चाय की चुस्कियों का मज़ा लीजिए। यही छोटे छोटे पल ज़िंदगी की सबसे बड़ी और प्यारी यादें बन जाती है। हाँ, इस मौसम में थोड़ा सावधान रहना भी ज़रूरी है। अगर बाहर जा रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखें और भीग जाए तो जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन ले, मौसम का मज़ा भी लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए। तो दोस्तों, हर बारिश की बूंद के साथ खुशियों को महसूस कीजिए, मुस्कुराइए और बस खूबसूरत मौसम को दिल खोल कर जी लीजिए। अब इसे सुहाने एहसास के साथ सुनते हैं एक शानदार गाना जो आपके इस मानसून को और भी यादगार बना देगा। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: देखते देखते आज की एक खूबसूरत शाम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि हमारे साथ बिताए गए ये लम्हे आपको पसंद आए होंगे और हमारे गानों और बातों ने आपकी शाम को और थोड़ा खुशनुमा बना दिया होगा। ज़िंदगी की भागदौड़ में अपने लिए और अपने अपनों के लिए थोड़ा समय निकालना मत भूलिए। मुस्कुराइए, खुश रहिए और छोटे पल को दिल से जीने की कोशिश कीजिए। यही छोटे छोटे पल आगे चलकर खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अगर आज की हमारी कोई बात आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो, किसी गीत ने आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हो, तो हमारा ये साथ सफल हो गया। अब मेरा इजाज़त लेने का समय हो गया है। कल फिर इसी समय नए जोश, नई बातें और नए पसंदीदा गानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे मनीषा। आप सुन रहे हैं दिल से ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

जैसे कुछ हमारे दोस्त वक्त आने पर रंग बदलते हैं, उस तरीके से एक मिठाई ने भी आजकल रंग बदल दिया है, जो कि अपने शहर की बहुत फेमस मिठाई है। और FDA जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ना, तो इस वजह से हर एक होटल वाला या जो जहाँ पर खाने की चीजें बनती वो सब एकदम स्ट्रिक्ट हो चुके हैं एंड मिलावट वगैरह थोड़ी कम हो रही है। जिस तरीके से इमरती एक बहुत ब्यूटीफुल और आया है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, तो इमरती की मिठाई का कलर ही आजकल गायब हो गया है और ओरिजिनल कलर में हमें इमरती दिखाई दे रही है। FDA ने कहा है कि किसी भी तरीके का जो कलर है आप खाने में ऐड करते हैं वो मिलावट नहीं जमने वाली है, बट कलर के बिना इमरती ना तो हल्की पीले रंग की नजर आ रही है। यानी कि अब तक जो हम इमरती खाते थे वो मिलावटी कलर वाली थी, अब जो आ रही है मार्केट में ओरिजिनल है। बस इमरती नहीं, ऐसे जितने भी खाने हैं ना जिसके अंदर कलर ऐड किया जाता था, तो उन सभी के ऊपर बैन लग चुका है, क्योंकि किसी भी खाने में कलर डालना एक तरीके का क्राइम है, ऐसा भी कहा गया है। बहुत सारे डिशेस थे जिसके अंदर कलर का यूज होता था, जैसे भजिया है, बारिश के मौसम में चाहिए ना, उसमें भी कलर मिलावट होता ही था। जो आप फ्राइड चिकन हो, वेज हो, मोमोज हो, जो कुछ खाते थे उसमें भी मिलावटी कलर होता ही था। उन सभी जगहों से कलर अब हटा दिया गया है। आई होप किस तरीके से जो अभी ये काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में भी ना, तो ऐसे काम ये शुरू रहे ताकि जो मिलावट हो रही थी वो हो ना सके और हम हेल्दी खाना खा सके। सो स्टे ट्यून।

तो बरसात का मौसम, ऊपर से गड्ढों की परेशानी, आय रहा ये दुविधा क्या ही कहे। देखो क्या है ना, आजकल बरसात बहुत अच्छी हो रही है, शहर में जहाँ देखो वहाँ पर बस पानी पानी आपको नजर आएगा। लेकिन इस बरसात के मौसम में ना तो आप चांद की सफर भी कर सकते हैं। जी हाँ, चांद की सफर करने के लिए आपको चांद पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने छत्रपति संभाजीनगर के रास्ते ही काफी है, जो कि आपको एकदम फील देने वाले चांद का, मंगल ग्रह का। क्योंकि शहर में रास्तों पर इतने गड्ढे हैं जितने गड्ढे चांद पर भी नहीं होंगे, उतने गड्ढे तो अपने शहर के रास्तों पर नजर आते हैं। तो क्यों जाए हम स्पेस में, जब मजा लेना है स्पेस का अपने धरती पर ही। तो अगर आप अपने जालना रोड से गाड़ी चला रहे होगे तो आपको मेन सिटी में सबसे बड़ा गड्ढा मिलने वाला है, क्रांति चौक ब्रिज के नीचे एक बड़ा गड्ढा है जो कि अभी कुछ दिन पहले तैयार हुआ था। तो वहाँ पर भी आप ऐसी चांद की सफर कर सकते हो। इसके बाद छोटे मोटे गड्ढे तो अपने शहर में बहुत सारे जगहों पर है, फिर चाहे दूध डेयरी सिग्नल हो या मोंडाना का ब्रिज हो, सिडको के पास का एरिया हो, बाबा पेट्रोल पंप वाला एरिया हो, गुलमंडी, पैठन गेट, सिडको, हड़को, बीड़ बायपास रोड, जहाँ देखो वहाँ पर बस गड्ढे गड्ढे और गड्ढे आपको नजर आएंगे। तो ये गड्ढे नहीं है, ये हमें फील दिलाते हैं कि हम रास्तों पर नहीं है, चांद पर स्पेस में गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि और कहे तो यार, शहर डेवलप नहीं कर रहा है अपना, कितना डेवलपमेंट हो रहा है और क्या चाहिए शहरवासियों को। थैंक यू सो मच महानगर पालिका फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। बस हेलमेट लगाना ना भूले और इसी तरीके से हमारे शहर को और स्मार्ट बनाते रहो। बस गड्ढे वाला शहर, खड्डा रास्ता के रास्ता खड्डा, कैसे गलत नहीं है, बट क्या ही करे, चलता है, चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। लाउन दिया, स्टे ट्यून।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ, और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
2: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
3: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स।
2: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याचबरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनियरिंग।
3: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
2: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं। सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688।
6: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
7: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन, फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स, 9th फ्लोर, बीड बायपास रोड, छत्रपती संभाजीनगर।
8: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
9: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15 नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
8: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च, MGM युनिव्हर्सिटी, किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942999.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MJ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM
0: साथ।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।